प्रत्येक साताक शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपराह्न 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: हजुर बुबा नमस्कार।
2: नमस्कार नानी। नमस्कार।
1: के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ?
2: सन्चै छु नानी।
1: अनि यो वर्ष

0: Bunnia. Extreme energy drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
2: मेरो नाम झलकमाया नर्की, मेरो घर वडा नम्बर 7 भदौरे कालिन्चोक गाउँपालिका।

यहाँ राई खन्यू कालोनी भारू किम्बु इन्दु इपिल इपिल मेन्दोला मोरिंगा भटमासे रक्त कमल डेस्मोडियम सुपर नेपियर स्मार्ट नेपियर एच नेपियर मक्का क्रस नेपियर

0: नहीं क्या यार हीरोइन तो सिंगर ले लो ये आलिया और मुखी है सिंगर बनने
1: बन क्या है सर
0: बिरोध आई क्या है ओके

0: र 98510 89677 बिहानी सिलाई मेसिन पसल चरीकोट बीच बजार। धुलीखेल अस्पताल दोलखा अस्पताल दोलखाको सूचना।
1: धुलीखेल अस्पताल द्वारा संचालित

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैडेबी थप्लो 7 मेगाहर्जबाट म बद्र प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 जुन 29 तारीख आषाढ़ 15 गते सोमवार पूर्णिमा तिथि पूर्णिमा को व्रत पनि हो आज अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षेण कल्पयभरी

बर्मन का लड़का बने रहनु मन जाऊ ती को वन भनी जानते क्या मन में सप वरी परी हेरे ढोड़छन अनी आज्ञा पाए रहनु मन जिले दर्शन प्रभु को गरे बोको शेर रघुनाथलाई पनि खुब आफ्नो स्वरूप झट धरे राम्रो छु मान कन पो कि जल्दी हनुमान सूरीबाको पासामा पहुँचाऊ रघुनाथलाई पनि खुब कुदे ती आकाशमा जल्दी पर्वतको उपर पुगी गए छाया बिसे राम रहे सूर्यलाई खबर दिन भनी ता जल्दी हनुमान गए

0: Tio. Papko okadara mansa tora balale jasle buarilio. Sarai duki bhayera sugri bajile binti gareko suni. Suriuko avab duka harda subhane antai karana le guni.
1: मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा मिनापा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालीसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर बिमल जस जो दाईको फलचारी बुद्धि हिन दोन जानी के सुनि पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार ओम जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपिश तिम्रो उजागर रामदूत अजुल दबल्दामा अञ्जनी पुत्र पवन सुतनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार्य स्मृति की संगी कंचन वर्ण विरास वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बरजाओ ध्वज बिराजई कांधे मुझे जने साजई शंकर सुमन केसर नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर पर्व चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया विकट रूप बदल लंगा दरवाया हेम रूप दरी असुर संहारी रामचंद्र की काज संहारी लाए सजीवन लखन जी आये श्री रघुवीर हरसिउर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरसम भाई सहज बदन तुम्हारे जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा नारद सारद सहित ऐसा एम कुबेर दीपाल जहाते कवि गोविंद कैसे के कहते तुम उपकार सुग्री भई किना राम मिलाए रात पद दिना तुम्हारो मंत्र भी विषण मान लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र योजन पर भानु लिलो ताई मधु फल जानु प्रभु मंदिर का मेली मुखमाई जल्दी लागी गए अतर्जन आई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुबारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिना पैसारे सब सुखलाई तुम्हारी शरणा तुम रक्षे काम को डरना आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हागते कापे भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हर्षव पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कमर वचन ध्यान जोलावे सब पर राम तब श्री राजा तिनके काज सकल तुम साजा अवरो मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग प्रताप तुम्हारा है परसी जगद जियारा साधु संत के तुम रखवारी असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता असवर दिन जान की माता राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रो रघुपति दासा तुम्हारी भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त खाई और देवता चिदन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटई मिट सब पीरा जो सुमिरई हनुमत बलबीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छुट्टी बंदी माँ सुख हुई जो ये पड़े हनुमान चाहसा हो सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा किजनाथ हृदय महडेरा ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसवंस रूप शिवर रामचंद्र शंकर जी बजा जय हनुमान जय बजरंग बली।